0: जिन त इंसानन हंदो दयो तबकाओ अगर सकत छव तो हे जमीन त आसमानन हंदो तंदो नबर चलने तल से चलियो
1: ला
0: कहीं हे क्यों न चलत जोर रोस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधि

0: protocols. Mr. Pradhan added that even after the government conveyed its readiness for a comprehensive discussion on the NEET issue, the Congress chose political spectacle over democratic debate. France's parliament has passed a landmark bill barring children under the age of 15 from using social media platforms. Lawmakers in both chambers of France's parliament voted yesterday in support of the legislation, which also bans students from using mobile phones in schools. In China Open Badminton, PV Sindhu will take on compatriot Unnati Huda and Lakshya Sen will get their singles campaign underway today. Ayush Shetty will take on Alvi Farhan in the singles opening round today. Men's doubles pair MR Arjun and Hariharan Amasakarunan. Mixed doubles pairs Rohan Kapura, Ratuka Shivani Gadde will also be in action today. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं. मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर. समय सुबह के 7:10 हुए हैं. एक वक्फे के बाद समाप्त करें लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह.
2: एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे. अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान. अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान. रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान. रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया. राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर.
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है
4: ब्रो? ये फटा है.
5: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं.
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा.
6: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो.
7: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है. आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स. साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए. 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर. चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर. टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी lead.

0: आज की सुबह हम दुआगू हैं, दुआ करते हैं कि आज का दिन हम सब के लिए खुशियों, कामयाबियों और आसानियों का पैगाम लेकर आए।
1: समय हम आपको बता दें कि इस लाइव ट्रांसमिशन में कंट्रोल रूम से हमारा साथ दे रहे हैं इरशाद अहमद नायकू और इंद्रपाल सिंह, एक और साथी वहां पर मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन।
0: और ड्यूटी रूम में हमारी मुआवनत कर रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब, और हमारे ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट हैं अब्दुल कयूम, और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं मोहतरमा समीना शाह साहिबा।
1: आज के लाइव शो में
0: जी
1: बहुत सारी बातें होंगी,
0: इंशाल्लाह
1: मालूमाती और दिलचस्प गुफ्तगू भी होगी, और साथ ही मौसीकी की मिठास से भी आपको महसूस करेंगे।
0: और आज के प्रोग्राम में तारीख के औराक पर भी नज़र डालेंगे, देखेंगे कि तारीख में आज के दिन क्या हुआ है, और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में, एक बड़ा पैकेज है, सब कुछ शामिल करेंगे इंशाल्लाह।
1: पैगाम सुबह के आज के लाइव शो में सुबह 10:30 पर हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत होगी ताकि हमारी सुबह बन जाए मजीद खुशगवार और यादगार।
0: शबीर साहब, मेहमान के बारे में तो आपने जिक्र किया है, लेकिन वो मेहमान कौन होंगे और उनके बारे में जिक्र भी करना है, आज जरा इस तजस्सुस को कुछ देर के लिए बरकरार रखते हैं, है ना? हम जरूर बताएंगे कि हमारे साथ कौन इस प्रोग्राम में आज लाइव इंटरेक्टिव सेशन में जुड़ रहे हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा मॉर्निंग प्रोग्राम पयाम सुबह।
1: अशफाक साहब, गुड बोझो इसी कोशिश बात
0: बिस्मिल्लाह।

0: जी, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर FM 103.5 MHz और मीडियम वेव 268.8 मीटर पर। प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सु।
1: अशफाक, आज 22 जुलाई है
0: जी,
1: एक ऐसी तारीख जिसने अदब, साइंस, खलाई तहकीक, खेल, सियासत और हिंदुस्तानी कौमी शिनाख्त के कई यादगार बाब अपने दामन में समेट रखे हैं। हम जानेंगे कि आज के दिन दुनिया में क्या कुछ हुआ, किन अजीम शख्सियत ने जन्म लिया और कौन सी नामवर हस्तियां इस दुनिया से कूच कर गई।
0: नजर डालेंगे आज के तारीख के औराक पर।
1: जी,
0: आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के दिन के हवाले से आप तक ये बात पहुंचाते हैं कि आज ही के रोज साल 1983 में पोलैंड में कई बरस बाद मार्शल लॉ बाजाब्ता तौर पर खत्म कर दिया गया, जो वहां जमहूरियत की बहाली की जानिब एक अहम कदम था।
1: साल 2013 में आज ही के रोज चीन में शदीद जलजलों ने 100 के करीब जाने ले ली और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। ये सानिया हमें याद दिलाता है कि कुदरत के सामने इंसान को हमेशा एहतियात, मनसूबा बंदी और यकजहती की जरूरत रहती है।
0: जी शबीर साहब, आज भारत में नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे मनाया जा रहा है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को दस्तूर साज असम्बली ने आज़ाद हिंदुस्तान के कौमी परचम तिरंगे को बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियार किया, इसलिए हर साल 22 जुलाई को कौमी परचम इख्तियार करने का दिन मनाया जाता है।
1: 22 जुलाई 2019 को भारतीय खलाई एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 को सतीश धवन खलाई मरकज से GSLV मार्क 3 रॉकेट के जरिए रवाना किया। इस मिशन में 3 अहम हिस्से शामिल थे, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। अगरचि विक्रम लैंडर अपनी पहली कोशिश में लैंडिंग न कर सका, लेकिन ऑर्बिटर आज भी चांद के गिर्द कीमती साइंसी मालूमात फराहम कर रहा है। इसी मिशन ने चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाबी की बुनियाद रखी।
0: 1918 ईस्वी में हिंदुस्तान के पहले फाइटर पायलट इंदिरा लाल रॉय शहीद हुए, जिन्होंने पहली आलमी जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया।
1: श्रीलंका के मारूफ फास्ट बॉलर कोलो सैकरा पैदा हुए 22 जुलाई 1982 को।
0: और एक खास बात, आज मकबूल भारतीय गुलकार अरमान मलिक आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। वो 22 जुलाई 1995 को पैदा हुए।
1: अशफाक, 22 जुलाई हमें अदब की अजमत, साइंस की जस्तजू, कौमी इतिहाद की अलामत, तिरंगे और खला में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई कामयाबियों की याद दिलाता है।
0: वाकई
1: तारीख सिर्फ गुजरे हुए लम्हों का नाम नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए रहनुमाई भी है। तो आइए
0: हम
1: एक नगमा सुनते हैं।
0: हाँ, प्यारा सुन।

0: आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर और आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है मेरे साथी अशफाक हाफजी। अशफाक, आज एक ऐसा दिन है जो हमारी कौमी तारीख में बड़ी अहमियत रखता है। आज ही के दिन सन 1947 में दस्तूर साज असम्बली ने भारत के कौमी परचम तिरंगे को बाजाबता तौर पर जो है मंजूर किया। यही वजह है कि हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे मनाया जाता है।
1: वाकई, और कौमी परचम शबीर साहब हर एक किसी भी मुल्क की शिनाख्त, आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी वकार की अलामत होता है। और हमारा तिरंगा भी अगर आप देखें तो इसमें तीन रंग है। सबसे पहले ज़ाफरानी रंग, दूसरा सफ़ेद और तीसरा इसमें सब्ज रंग है और बीच में एक अशोक चक्र है। इन सब के जरिए हमारा जो तिरंगा है ये खूबसूरत पैगाम देता है। शबीर साहब,
0: ये जो ज़ाफरानी रंग है वो हमें हिम्मत, कुर्बानी और बेलोस खिदमत की अलामत है। सफ़ेद रंग अमन, सच्चाई और दयानतदारी का दर्ज देता है, जबकि सब्ज रंग तरक्की, खुशहाली और फितरत से हमारी वाबस्ती को जाहिर करता है।
1: और दरमियान में जो मौजूद गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है वो ज़िंदगी में मुसलसल हरकत और इंसाफ और तरक्की की अलामत है। ये हमें याद दिलाता है कि कौमें हमेशा आगे बढ़ने से ही तरक्की करती है।
0: जब हम कौमी परचम लहराते हैं तो इसके साथ आज़ादी की जद्दोजहद और लाखों कुर्बानियों की यादें भी हमारे दिलों में ताज़ा हो जाती हैं। हिंदुस्तान

0: एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुछ ही फासले पर ज़बान बदल जाती है, लिबास का रंग बदल जाता है, खाने का जायका बदल जाता है, त्योहारों की रौनक बदल जाती है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती और वह है हमारा कौमी परचम तिरंगा।
1: वाकई शबीर साहब, और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है, और यही परचम हमें ये एहसास भी दिलाता है कि हम एक मजबूत और मुत्तहिद कौम हैं।

0: जी सामिन, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 268.81 मीटर पर। प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह।
1: अशफाक, क्या आपने महसूस किया है कि आजकल के डिजिटल दौर में किताब पढ़ने का शौक जो है वो कम होता जा रहा है?
0: हाँ।
1: किताब सिर्फ कागज पर छपे हुए अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक तहजीब, इल्म, शऊर और आने वाले कल की तामीर का सबसे मजबूत जरिया है। आज श्रीनगर की खूबसूरत वादी में इल्म अदब का एक ऐसा ही रंगारंग जश्न जारी है जिसका नाम है चिनार किताब मेला।
0: अरे क्या बात है शबीर साहब, आपने किताबों का जिक्र छेड़ दिया, आप यूं समझे कि दिल के ये तार छेड़ गए। किताबें, आपने जब कहा कि रुझान कम हुआ है,
1: बिल्कुल
0: किताबें हम लोग पढ़ते नहीं हैं,
1: बिल्कुल
0: गुलजार साहब की एक कुछ शायरी मुझे याद आ रही है, किताबों का जब भी जिक्र होता है तो ये शायरी जहन में आती है। वो लिखते हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर।
1: बहुत खूब,
0: बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, बड़ी हसरत से तकती है, किताबों से जो जाबती राबता था कट गया है,
1: बिल्कुल
0: कभी सीने पे रख के ले जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर नीम सजदों में पढ़ा करते थे, छूते थे जब इसे। आप देखिए किताबों का ये जिक्र जब भी आता है ना, वाकई दिल के तेज चढ़ जाते हैं।
1: ये तो मौजूदा दौर की अकासी करता है,
0: है ना, मौजूदा दौर की। और आप देखें कि अब ये जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, चिनार बुक फेस्टिवल जैसे ऐसी कोशिशें जब सामने आती है तो एक नया रंग महसूस होता है ना, एक नई उम्मीद जागती है कि किताबों का जो रुझान खो गया है ना वो वापस आ जाए। जबरवन के बिल्कुल पहाड़ी के दामन में डल झील के इस दिलकश माहौल में वाकया श्री कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन SKICC में मुनक्किद होने वाला ये किताबों का मेला, ये जो चिनार बुक फेस्टिवल है, 18 जुलाई को शुरू हो गया था और 26 जुलाई को ये इख्तिताम पजीर हो रहा है। शबीर
1: अशफाक, इस मेले में मुल्क भर के सैकड़ों नाशरीन और किताब फरोश शरीक हैं, जहां उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी और दीगर हिंदुस्तानी जुबानों की हजारों किताबें कायरीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई है।
0: बाकी और ये जो वहाँ पे मेला लगा हुआ है, ये सिर्फ किताबों की ये खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि आप देखें यहाँ अदबी नशस्तें, मारूफ मुसन्निफीन से मुलाकात, नई किताबों की रोनमाई, बच्चों के लिए कहानी हुई है, तख्लीकी वर्कशॉप्स हो रहे हैं और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अहले खाना अपने दोस्तों के हमरा वहाँ पे जाएं।
1: बिल्कुल, किताबी इंसान को सोचने का सलीका, सवाल करने का हौसला और जिंदगी को बेहतर अंदाज में समझने की बसीरत अता करती है।
0: वाकई
1: ऐसे मेलों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये नई नस्ल को मोबाइल स्क्रीन से निकालकर किताबों की दुनिया से जोड़ते हैं, जहां इल्म भी है, तखयुल भी और किरदार साजी भी।
0: क्या क्या बात है, क्या बात है शबीर साहब, स्क्रीन को छोड़िए और किताबों की ओर आइए। आप श्रीनगर या इसके आसपास मौजूद हैं तो जरूर इस किताब मेले का रुख कीजिए, अपने बच्चों, दोस्तों, अहले खाना को भी साथ ले जाएं, क्योंकि एक अच्छी किताब शायद किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। शबीर साहब,
1: बिल्कुल अशफाक साहब, किताबें खामोशी से बात कर

0: जी सामिन, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर FM 103.5 MHz और मीडियम वेव 268.8 मीटर पर। प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं आप पयाम सुबह। अभी वक्त हो चला है खबरों का। सामिन, खबरें सुनते हैं और उसके बाद जल्द वापस हाजिर होते हैं।
1: ये छे आकाशवाणी। सुबह 7:05 सपद खबरन हुंद बुलेटिन है चुस ब तजम्मुल अहमद। गड़ आख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट। हुकूमतन चु वनमुत जे सो छे नीट पेपर लीक तो बाकी मामलन पेट पार्लियामेंट्स मज बहस करन बापत तैयार। मुखालिफ दर दिस एहतजाज किन आई दशवन ऐवानन हज कार्रवाई रात पूर दोह बापत मुलतवी करने। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन चु नीट पेपर लीक मामलस मज मुलवस सारनी नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई करने किस अजमस फिर दुत्मुत। भारत शुमाली मैकडोनियन चु तिजारतस अंदर हुरर तो अहम शोबन मज अथवा सुर्रावन इतफाक कोर्मुत। तो मध्य प्रदेश असम्बली छे यकसान सिविल कोड बिल मंजूर करमच। पेश खबर तफसील सान। हुकूमतन चु वोनमुत जे सो छे नीट पेपर लीक मामल तो बाकी मसलन पेट पार्लियामेंटस मज बहस करन बापत तैयार। रात शामस वोन नई दिल मज मीडिया सित कत करान मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंगन जे लोकसभा मज अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी चे हुकूमत चे यकीन दहनी बावजूद नीटस मुतल्लिक मामलातन पेट बहस करने की पन्ने मुतालब निश पथ फेरमित। दोहलोस कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खरगे कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी तो प्रियंका गांधी वाड्रहन बाकी पार्टी अरकानन सत नीट मामलस पे बहसुक मुतालब करान एहतजाज कोर्मुत। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो मरकजी दाखिल सेक्रेटरी गोविंद मोहनन कुर लोक कल्याण मार्गस पे एहतजाज जाए कांग्रेस रहनुमान सत मुलाकात। राहुल गांधी वोन तिम जे यदवे हुकूमत नीट तो बाकी मामलन पेट पार्लियामेंटस मज बहस करने बापत तैयार छे तेल करन तिम फूरी तौर पनुन एहतजाज खत्म। कांग्रेस रहनुमान सत मुलाकात करने पत दुत डॉक्टर जितेंद्र सिंहन इतला जे हुकूमतन चे नीट मामलस पेट बहस च मंग कबूल करमच। अमापोज मरकजी वजीरन वोन जे येले कांग्रेस लीडर हुकूमत के मौकफ निश जानियाब करने आए तिम खत न पन्ने गोडनिच मंग निश पथ तो लगख मजीद मुतालब कर। दौरान आए रात पार्लियामेंट कन दोशवन ऐवानन हज कार्रवाई नीट पेपर लीक तो बाकी केंचन मामलन पेट मुखालिफ दर दिस फिर ठहर त्रावन यन पत पूर दोह बापत मुलतवी कर। मुखालिफ दरचो पार्टियों दिस क्रकनाथ तुलन किन आई कार्रवाई दोहली त्रेई फिर मुलतवी कर। कार्रवाई मज ठहर त्रावन किन हुक न दोशवन ऐवानन मज सवालन हुंद वक्फ त सपदित। लोकसभा हिंद स्पीकर ओम बिरलाहन तो तिमन पत प्रिजाइडिंग अफसरों कर बार बार अपोजिशन मेंबरन ऐवानुक नज्म नस्क बरकरार थावनिच अपील मगर तिम रूद क्रकनाद करान यम पत ऐवानिच कार्रवाई पूर दोह बापत मुलतवी करन आए। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन चु नीट इम्तिहान पेपर लीक मामलस मज मुलवस नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई करनुक तो मुल्क कन नौजवानन हिंदन मफादन रच करनुक अहद दर्रोमुत। तिमो वोन जे हुकूमत छे यथन वाकातन रोट करन बापत रंग रंग कदम तुलान। पार्लियामेंट हाउस किस अहातस मज NDA पार्लियामानी पार्टी यथवन मंगल मिलन वनान छे खिताब करान वोन वजीर अजमन जे नीट पेपर लीक मामलस मज छे तहकीकती एजेंसी दन पन लगित तो अथ मामलस मज मुलवस कंस ते नफरसी नहरगिज बख्शन। मीडिया सत कत करान वोन पार्लियामेंट मामलन हिंद वजीर किरन रिजिजुन से मीटिंग मज दुत वजीर अजमन दुरुस मुल्कस अंदर आइंद इम्तहानन मज पेपर लीक रुकावन बापत सारनी फरीकन हजन मरबूत।

पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे नश्र होगा, गोजरी प्रोग्राम शाम के 5 बजे पेश होता है। शाम 6:05 पर देहाती भाइयों के प्रोग्राम में मामूल की नशरियात के अलावा बच्चों की हफ्तावार महफिल होगी फलविन टूरी।

0: के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
1: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका

0: व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी है। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी

0: रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ईशो आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम वाले कशर मौसीकी बोझो दस्तलो कला में आज जरगर सहित आवाज से दीपाली वातल तो मौसीकी से तरतीब दिसम गुलाम रसूल आखुन सबन तो करो गोश गुजार जी ये बात आज तुहद बापत गोडनिच फिर नशर करान।

0: आवाज दीपाली वातल, तबलो इस्वायान इम्तियाज मलिक, रबाब गुलाम मोहम्मद लोन, संतूर उमर मजीद मल्ला तो सारंगी गौहर अहमद शाह, माविन अब्दुल वहीद लोन। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से खबरनामा पेश होगा।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी राब्तों में नुमाया तौसी की ज़रूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आपदोस्त शिकन जंगी बहरी जहाज़ INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तजारती निज़ाम के तई अपने अहद का अदा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोबजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से, जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है, इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकतदारी कायम करने के लिए मदऊ किया, जिससे माली शमूलियत को फ़रोग़ देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाज़ा होता है।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नामा निगार की एक रिपोर्ट।
3: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट्स के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निज़ाम के शोबों में शराकतदारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैनुल अक्वामी समशी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे मुश्तरका इकदामात में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियल विजल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी, जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी और मयारी हिफ्जान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम को

0: आगे बढ़ाने के तय भारत के अजम की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तरा, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बी निज़ाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। आज आला अहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाजाब्ता प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कल सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वुजराए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनाक़िद होगी। इस मीटिंग में वुजरा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: भारतीय बहरिया INS मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनाकिद होगी। INS मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना

0: आईएनएस मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनक़द होगी। आईएनएस मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाज़ों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के वाकयात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस सरकारी स्कीम के तहत तालिबात को न सिर्फ स्कूटी फराहम की जाएगी बल्कि उन्हें बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, लाजमी मुतालिका सामान और 4 लीटर पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। माजूर तालिबात शहीद फौजियों और बेघर अफराद की बेटियों के लिए आमदनी की हद की शराइत में रियायत दी जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारत ने उसूलों पर मबनी शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निज़ाम के तई अपने आज़म को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाज़ा होता है। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तजारती निज़ाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वसी तर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नर्म रवि पर मबनी गैर मुल्की रास सरमायाकारी के निज़ाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबेन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इन्हिसार शराकतदार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नज़दीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल

0: गए और नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैन तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहाँ दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तिजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबार ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबार की चंद अहम बैन अलावामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी रबतों में नुमाया तोसी की ज़रूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज़ INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निज़ाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय फलसफा और रूहानियत न सिर्फ हमारी कदीम किताबों में मिलती है, बल्कि ये भारत के बाशिंदों की रोजमर्रा रिवायात का एक अहम हिस्सा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कल सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू कैंपस, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मुश्तरक एहतमाम से मनकद शक्ति मीमांसा नामी कौमी सिम्पोजियम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चार रोज तक जारी रहने वाले इस सिम्पोजियम की बदौलत शुरका को सनातन से जुड़ने का मौका फराहम होगा। बीजेपी लीडर फैसल मीर ने कल लोकभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके हल्का इंतखाब हबकदल के लोगों की तरक्याती जरूरियात के बारे में उन्हें आगाह किया। खुशहाल कशीर एजुकेशनल ट्रस्ट बांडीपोरा के चेयरमैन रोहित भट्ट ने भी एलजी के साथ मुलाकात की। ट्रस्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी रशीद फयाज भी उनके हमराह थे। सरकार ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी से जाती तौर मिलकर उन्हें इस बारे में सरकार की जानिब से यकीन दिलाया। ताहम डॉ जितेंद्र सिंह ने इल्जाम लगाया कि इसके बावजूद राहुल गांधी अपने मुतालबात से किनारा कशी कर रहे हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि पुलिस ने कल शाम लोक कल्याण मार्ग पर सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा समाजवादी लीडर अखिलेश यादव नीज दीगर कई अपोजिशन लीडरान को हिरासत में ले लिया, जहां वो धरने पर बैठे थे। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना और ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने कल राजौरी का दौरा करके सैलाब से पैदा हुई सूरतहाल और मुतासरीन की राहतकारी के लिए जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने वहां मकामी स्कूल में कायम किए गए इमदाद व बाजाबादकारी मरकज में मुतासरीन के साथ बात करके उन्हें दी जा रही सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर वहां वुजरा ने कई बाजाबादकारी प्रोजेक्टों को शुरू करने का ऐलान किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने मौजूदा मौसमी सूरतहाल के तनाजुर में कुलगाम का दौरा करके वहां इंसदादी सैलाब और बारिश से पैदा होने वाले इम्कानी हालात से निमटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह की मुसलसल निगरानी और अफरादी कुवत व मशीनरी को तैयारी की हालत में रखने की हिदायत दी। इससे कबल डिविजनल कमिश्नर ने कुलगाम के बनगाम इलाके में वाका माता कुलवागीशोरी मंदिर में सालाना महायज्ञ के इनेकाद के लिए इंतजाम का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में कल रात से बारिशों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से भी मुसलसल बारिशें हो रही हैं। मौसमी सूरतहाल के तनाजुर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज चौथे रोज भी मुअत्तल रखी गई है। कुलगाम के हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पर्रू ने खबर दी है कि जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास और पास में कायम एक आश्रम में 6,000 के करीब यात्री इस वक्त कयाम कर रहे हैं। ताहम किसी भी यात्री को आज वादी की तरफ आने की इजाजत नहीं होगी। यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी आने के बाद लिया जाएगा। बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान ने जिले के बिरवा और नारबल इलाकों में मुसलसल बारिशों के बाद पैदा हुई सूरतहाल का जायजा लिया। उन्होंने नाला सुखनाग और दीगर नदी नालों में पानी की सतह में इजाफे के पेश नजर हसास इलाकों में इमरजेंसी टीमों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी। हुकूमत ने नासाजगार मौसमी सूरतहाल के पेश नजर कश्मीर सूबे के तमाम सरकारी व तस्लीम शुदा गैर सरकारी स्कूलों और जम्मू सूबे के विंटर जोन्स में आने वाले तालीमी इदारों में गर्माई तातीलात 26 जुलाई तक बढ़ा दी है और ये तालीमी इदारे अब 27 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के कई मकामात पर मुसलसल बारिशों के बाद पत्थर गिर आए हैं, जिसके नतीजे में शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई है। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद ने इस शाहरा पर सफर करने वालों को मशवरा दिया है कि वो अपना सफर शुरू करने से पहले शाहरा की सूरतहाल के बारे में तफसीलात हासिल करें और अगर जरूरी न हो तो सफर करने से गुरेज करें। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट्स की मुलाजमत में यकीनी तरक्की की स्कीम से मुतलिक जामे सिफारिशात की जांच और उन्हें हतमी शक्ल देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने आला सतह की एक कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी 1,700 पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट्स की देरी न मांगों का भी जायजा लेगी। आखिर में दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।

0: श्रीनगर
1: अब एक नए अंदाज में
2: बाग लगे इस आंगन को।
0: हर सुबह मालूमात, रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
1: पयामे सुबह। मॉर्निंग लाइव शो
0: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
1: पयामे सुबह। जी सामिन, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर FM 103.5 MHz और मीडियम वेव 268.8 मीटर पर। प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह।
3: अशफाक, इस वक्त वादी कश्मीर में शदीद बारिशों, गरज चमक और अबर आलूद मौसम का सिलसिला जो जारी है
1: जी।
3: मगरबी हवाओं में खलल और मानसून के मिलाप की वजह से वादी के बेशतर हिस्सों में मौसम गैर मुस्तकम है, जिसके बाइस बाज मकामात पर फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बना हुआ है। मौजूदा सूरतहाल के पेश नज़र हुकूमत ने वादी के स्कूलों में गर्मियों की तातीलात को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
1: बच्चा आसन सख खुश गमित ये तमी छुट्टी हुंद आसन बोजा,
3: बिल्कुल।
1: मगर यह मौसमी सूरत हाल लाजिम उस अम मूजूब सकूल वारिया वादी हिंदन या कशीर हिंदन तिमन इलाकन मंज यमन जन मंज खतरा चला हक रोजा। उम्मीद करू जो मौसम गस इंशाल्लाह ठीक, तमी पत गसन बे सकूल।
3: तो बोजो गड़ अख बथन बिस्मिल्लाह।

0: मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं, ब्रीफ शावर हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट या कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है फ्रॉम टुमारो आफ्टरनून ऑनवर्ड।
1: शदीद बारिशें लगातार हो रही है और मुसलसल बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है डॉक्टर साहब, ऐसे में कौन से इलाके ऐसे हैं जिनको ज्यादा हसास यानी मोहतात रहना है, और उसके साथ कुछ ऐसी सलाहें जो आप पहुंचाना चाहेंगे हमारे सामने तक?
0: बिल्कुल, देखो ये पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस तरह ये पहाड़ी इलाका है, एक्सेप्ट वन आर टू डिस्ट्रिक्ट जो मैदानी इलाकों में हम उसको कंसिडर करते हैं।
1: जी
0: तो जो भी पहाड़ी इलाके हैं और बारिशें अगर मुसलसल आपका 3-4 दिन से चल रहा हो तो लैंडस्लाइड के खदशा जो है काफी ज्यादा रहते हैं, काफी ज्यादा रहते हैं। तो बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है, खासकर अगले 24 घंटे तक, ताकि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो। और उसके बगैर जो नदी नाले हैं, नदी नालों के आसपास लोग रहते हैं, वो भी बिल्कुल एहतियात करें ताकि कोई भी किस्म का हादसा ना हो। और ड्राउनिंग इंसिडेंट कल हमने अलग अलग विजुअल्स में देखा, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से।
1: जी जी
0: तो लोग बिल्कुल एहतियात करें और इसको बिल्कुल बारीकी से लें कि ये एक डिजास्टर टाइप का वेदर है, और बिल्कुल अपने आप को सेफ लोकेशन पे रहें और बिल्कुल ऐसे अननेसेसरी वेंचर आउट ना करें, और ट्रैवल भी बिल्कुल जब तक जरूरी ना हो पहाड़ी इलाकों के अंदर ना करें।
1: डॉक्टर साहब, सयाह हमारे यहाँ आते हैं, डल झील जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तफरी मकामात का रुख करते हैं, कुछ ऐसे इलाके या डल झील के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है?
0: देखो ऑलरेडी जो एडवाइजरी है ये जनरल एडवाइजरी सबके लिए, चाहे वो टूरिस्ट हो, जनरल पब्लिक हो, उसके बगैर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या साथ ट्रेकर्स हैं, हर लोग अभी, क्योंकि बारिशें जो है ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड या कहीं पे थोड़ा एक ही जगह तक महदूद है, तो ये बारिशें जो है वाइड स्प्रेड हो रही है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे में ये एडवाइजरी सभी के लिए लागू है, और बिल्कुल एहतियात करें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे सामने इनको अहम मालूमात फराहम की, आपका बहुत।
2: समय थे डायरेक्टर मेट डॉक्टर मुख्तार साहब, जो हमें मौजूदा मौसमी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप सुनते रहें लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह, शबीर अहमद वानी और मेरे साथी अशफाक हाफिजी के साथ।